जिस पर रे हुआ फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों न वखला वक्त बा वेंट इन रो बगले रो तजा शेह बाग के मुग अब्दुबा पाप देम बन्यो कई अमल फी चितू बा इतालिया उस दो अल्लाह के बाबोन।